0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: हंस तो

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है. बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

और ये उजाला रेडियो है। वेलकम, स्वागत करता हूँ आपको प्रोग्राम का इस हिस्सा को सुनने के लिए।

0: इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें www.ujala.nl।
1: आज से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे और वादा करो हमेशा साथ निभाओगे।

बारिश में आसमां को पता नहीं चलता। माहिरा शर्मा आगे में चलकर पारस छबरा और गाने वाले सोनू कक्कर एंड नोह पारहोड़ निखिल डिसूसा एंड एक खलोफ नोह एन फान दी कक्कर्स दान दो वखवोन एरबाई नु गुलाबियां खी हो जाला रेडियो पर

गुलाबी आंखें, हाँ गुलाबी आंखें जो तेरी देखे तो शराबी ये दिल हो गया। ग्रुप सनम से आप सुनेंगे।

आवोगे जब तुम साजना तो अंगना फूल खिलेंगे। उजाला रेडियो पर आप सुने या एंड अब्बास अब्बास एंड श्रेयास से इस गीत को आज आप सुने प्रोग्राम में। किस फॉर योर एगन रेडियो, किस ऑल टाइट फॉर उजाला रेडियो।

Channa Maria Maria प्रीतम एंड अरिजीत सिंह से आप सुने उजाला रेडियो पर सुनने वालों, हम आपको बता चुके ना कि कहीं ना जाइए अंदर तो पछताइए, वंत सुन अब गाना।

तुम पास हो या साथ हो, मैं शेप, यानी कि पुराने और नए गीतों की मिलावट आप सुने अब देख रोचते, और अब एक गो और या तो

द टाइगर, या द टाइगर ऑफ बैठक गाना रामदेव चैतू से आप गीत को सुने। En dan gaan we het weer iets rustiger aan doen.

King and Junita Gandhi से आप सुने कि नहीं नहीं अभी नहीं अभी थोड़ा इंतजार। और सुनने वालों, अब मोहम्मद रफी साहब हिस्सा ले रहा है प्रोग्राम में।

ओ मोहम्मद रफी एंड लता जी से आप गीत को सुने, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। और अब प्रोग्राम का इस हिस्सा में पेश है एक आखिरी

साथ छूते ना कभी, चाहे कुछ पल ही जिए। Het is woensdag 9-9-2026. Het is woensdag 9 september.

यहाँ जो अंजू और दे पानी दा रंग है, आयुष्मान खुराना की आवाज में। बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, अब जहन में नहीं है पर नाम था भला सा। आबरू खींचे खींचे से आंखें झुकी झुकी सी, आबरू खींचे खींचे सी आंखें झुकी झुकी सी, बातें रुकी रुकी सी, लहजा थका थका सा।

0: कभी जो बादल बरसे, और इस बार आप सुनोगे जान बन गए विशाल एम एन असीस कौर की आवाजों में। उजाला है रेडियो है ये। और आज की लेसी लेसी सुबह में जो कोई अभी बिस्तर में है मजा लीजिएगा।
1: सांस की जो जुबां
0: ऐसी बारिश का

0: तो आपकी तारीफ में क्या कहे, आप तो हमारी जान बन गई। और इस वक्त कुछ लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन लोगों ने चून किए रेडियो को, और लगता है कोई मैनहैटन में है, प्रोग्राम सुन रहा है। ज़रा सा अपना नाम भी लिख देना जब आप मैसेज भेज रहे। स्कैफनिंग से श्रीमान लक्ष्मण बदलू प्रोग्राम को सुन रहा है, आपको स्वागत करते हैं। मिस्टर शेर सिंह देन हाग से वेरी गुड मॉर्निंग। और रॉय पराख, या बेन मुई बेन लात उत इटालिया गेकोमे दुस ये लिग नोग लेकर वार्म अंडर द डेकन्स, गनीत नोग एफे। En ik denk dat je straks ook aan het werk, weer aan het werk moet. Barish ke mausam hai kya kahe, agar aap to jaan ban gaye, to main kahungi, mere paas ek dil tha, mere paas ek dil tha, aur tumne chura liya.
1: Kuch kahaniyan samandar ki tarah hoti hain, zaruri bhi, adhuri bhi. Ek kinare se pura samandar nahi dikhta na. ये कहानी पता नहीं समंदर है या जरूरी है।
0: ये कहानी क्या आपको पता है समंदर है या कहानी है?

0: फिर मिलने का वादा था, ये किस्सा तो आधा था।
1: ना दिल भर की बातें की और ये किस्सा तो आधा था। अगर दिल में बातें रह जाती हैं तो वाकई किस्सा आधा रह जाता है। कोशिश करके पूरे दिल की बात आपको बता देना चाहिए, है ना। अल्फाज थे कि जुगनू आवाज के सफर में, अल्फाज थे कि जुगनू आवाज के सफर में, बन जाए जंगलों में जिस तरह रास्ता सा, ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, ख्वाबों में ख्वाब उसके, यादों में याद उसकी, नींदों में घुल गया हो जैसे कि रत जगा सा। पहले भी लोग आए कितने ही जिंदगी में, पहले भी लोग आए कितने भी जिंदगी में, वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुड़ा सा।

तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं अरिजीत एंड पलक मोचाल से आपने गीत को सुना है। तो मैंने आपके लिए एक ऐसा गीत सेलेक्ट की, एक नया गीत है और गीत का बोल है तेरे जाने के बाद। तो चलो मिलकर आपके साथ हम इस गीत को सुनते हैं और हार्ट टचिंग सॉन्ग सैड सॉन्ग हैगा। तेरे होते हुए आ जाते थे सारे लोग, तेरे होते हुए आ जाते थे सारी दुनिया, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला।

तेरी जाने की बात टचिंग सॉन्ग, तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला, मुंतसिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, मुंतसिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, कौन आएगा यहाँ, कौन है आने वाला। मैंने देखा है बहारों में चमन को चलते, मैंने देखा है बहारों में चमन को चलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, क्या खबर थी जो मेरी जा में घुला है इतना, क्या खबर थी जो मेरी जा में घुला है इतना, है वही मुझको सरेदार भी लाने वाला। तुम तकलीफ को भी इखलस समझते हो, तुम तकलीफ को भी इखलस समझते हो, दोस्त होता नहीं, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला।

हाँ, मुझ पे बरस बरस जा तू, आ मुझ पे बरस। क्या खूबसूरत गीत आपने सुना है। अगला गीत पेश करने वाली हूँ और गीत का बोल है रब से मांगी। क्या मांगे? ऐसे चुप है कि ये मंजिल बिखरी हो जैसे, ऐसे चुप है कि ये मंजिल भी करी हो जैसे, तेरा मिलना भी जुदाई की घड़ी हो जैसे।

रब से बस यही दुआ मांगा था, ये दुआ हो तुम तोहफा मेरी मोहब्बत का। रब से मांगी अपने ही साया से हर गाम लरस जाता हूँ, अपने ही साये से हर गाम लरस जाता हूँ। रास्ते में कोई दीवार खड़ी हो जैसे, मंजिलें दूर भी हैं मंजिलें नज़दीक भी हैं, मंजिलें दूर भी हैं मंजिलें नज़दीक भी हैं। अपने ही पाँव में जंजीर परी हो जैसे, कितने नादान हैं तेरे भूलने वाले की तुझे, कितने नादान हैं तेरे भूलने वाले की तुझे। याद करने के लिए उम्र पारी हो जैसे, आज दिल खोल के रोए हैं, आज दिल खोल के रोए हैं तो यूँ खुश है कवि, आज दिल खोल के रोए हैं तो यूँ खुश है कवि। चंद लम्हों की ये राहत भी भारी हो जैसे।

0: तेरी कमी है हर जगह बस यादें बाकी। Another version of वो बीते दिन,
1: वो टूटे हुए ख्वाब।
0: मिलेंगे आपसे ब्रेक के उस पार कॉफी टाइम के साथ, तो अपना कॉफी चाय तैयार कीजिएगा, मैं भी जल्दी से अपने कॉफी को तैयार करती हूँ।
1: का सुकून वो मेरा पागलपन जुनून,
0: बस हमारे साथ बने रहो।

0: तू ही मेरे दिल की धड़कन, तू ही मेरे मेलोडी, एंड इट्स कॉफी टाइम यू आर के जरिए। सो आर यू रेडी?
1: इट्स नॉट अबाउट अ कॉफी, इट्स अबाउट यू एंड मी
0: हनी।

तो आपने कॉफी तैयार रखे है, तो चलो चीयर्स करते हैं। तो बादलों के पीछे से सूरज भी अपनी किरणें को हम पर गिरा रहे हैं। So let's enjoy this morning. Cheers, guys.

फिर भी हम साथ में कॉफी चाय या जो भी आप पी रहे हैं, साथ में हम उसका मजा ले रहे हैं। सीतल रॉय स्वर्ण कॉफी तथा उच्च लेकर वाकर।

Mr. and Mrs. Bihari. Enjoy. Cheers. तुम मिलो तो सही, तो बारिश थोड़ा सा थम गया है, तो बढ़ते हैं प्रोग्राम को लेकर. Ja, ik word een beetje afgeleid hoor. Maar dat mag. Soms. Het is 14 graden. Nog steeds bewolkt. Het zonnetje die schijnt hier en daar. Geniet ervan. Alkaji. Saderai Udit Narain.

तसव्वुर का आलम वो दिले आशिकी वो प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार अ लवली सॉन्ग निकाला गया है फ्रॉम द फिल्म ऐतराज़। आपको याद होगा फिल्म में काम किए थे करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा एंड अक्षय कुमार एंड नॉट टू फॉरगेट अमरीश पुरी का एक ज़बरदस्त रोल था इस फिल्म में प्रियंका के साथ। लवली ब्यूटीफुल फिल्म। कुछ दिन हुए ये फिल्म निकले हुए थे लेकिन अभी तक याद रहता है ऐसी फिल्मों। आजकल के फिल्मों जब देख लेते हो तो एक महीना दो महीना बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। और ब्रेडा से अरुण गन्हाई मैसेज भेज रहा है, अरुण खनिज फाइ कॉफ़ी एंड लाट स्मैक एंड योर दोख्तर अलीशा। हाय हेलो अलीशा, एन हेले गोये मॉर्गन एंड वेलकम बाय उजाला रेडियो। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, प्रोग्राम को सुनते हो, मेरी आवाज़ को सुनते हो, आपको दिल से स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। खनीत फन एलक मोमेंट फन दख वंच वेट नीट हो लांग दत नोख मह। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफिले थे आने वाले क्या हुए, मैं जिनकी राह देखता हूँ रात भर, मैं जिनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, इमारतों तो जल के राख हो गई, इमारतें तो जल के राख हो गई, इमारतें बनाने वाले क्या हुए, ये आप हम तो बोझ है ज़माने का, ये आप हम तो बोझ है ज़माने का, ज़माने का बोझ उठाने वाला क्या हुए, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए।

तूने जिंदगी में आके जिंदगी ही बदल दी, अलका याग्निक की आवाज़ में, फ्रॉम द फिल्म हमराज। हमराज एक फिल्म था जिसमें अक्षय खन्ना ने काम किया था, और वो भी एक नेगेटिव रोल में। आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मंजिल पे पहुँचूंगी कैसे आपका जब तक साथ नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक ज़रा सा दिल टूटा है, एक ज़रा सा दिल टूटा है, और तो कोई बात नहीं। किसको खबर थी सावल, किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। किसको खबर थी कि सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात ही नहीं। माना जीवन में औरत एक बार, माना जीवन में औरत एक बार मोहब्बत करती है, लेकिन मुझको ये तो बता के क्या तू तो औरत जात नहीं। ख़त्म हुआ मेरा अफसाना, अब ये आंसू पोंछ भी लो। ख़त्म हुआ मेरा अफसाना, अब ये आंसू भी पोंछ लो। जिसमें कोई तारा चमके, आज की रात वो रात नहीं। मेरे गमगीन होने पर अहबाब है जो हैरान, मेरे गमगीन होने पर अहबाब है जो हैरान। जैसे मैं पत्थर हूँ, मेरे सीने में जज्बात नहीं।

वादा रहा सनम मालका जी एंड अभिजीत से आपने सुने तो जानम लेट्स फॉल इन लव। तुम्हें भूल जाऊं ये होता नहीं, तुम्हें भूल जाऊं ये होता नहीं, कोई वक्त हो दर्द सोता नहीं। ना हो जाऊं बदनाम तुम, ना हो जाए बदनाम तुम, इसलिए मैं रो रो के दामन भिगोता नहीं। ये वो फासला है जो उगे खुद बखुद, ये वो फासला है जो उगे खुद बखुद, कोई दर्द के बीज बोता नहीं। ये माना कि तूफा का जोर है, ये माना कि तूफा का जोर है, कोई दर्द के बीज बोता नहीं। ये माना कि तूफा का जोर है, मैं घबरा के कश्ती डुबोता नहीं।

Oh, Jana, let's fall in love, Shan and Shreya Ghoshal से गीत को आपने सुना है। मोहब्बत रंग दे जाती है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिल जाते हैं। मुश्किल तो ये है, मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है।

हम सफ़र चाहिए, दिल है बेघर एक घर चाहिए, और वो भी उम्र भर चाहिए। या तेरे नाम से हर गुलशन के फूल निखर जाए, तेरे नाम से हर गुलशन के फूल निखर जाए, तेरे ही प्यार की सजदा रोम रोम में समा जाए, तेरे ही नाम से हर जीवन का रुख संवर जाए, तेरे ही नाम से जीवन का हर रुख संवर जाए। ऐ जानम तेरे चरणों में ये जीवन गुजर जाए। और चाहे जुबा से कुछ ना कहो, आंखें हमेशा कह जाती हैं।

अनुभव का जी और सुन निगम, चाहे जुबान से कुछ ना कहो आंखें तो कह रही हैं तुम्हें मुझसे प्यार है। ना खंजर से ना तलवार से, ना खंजर से ना तलवार से, बस मुझे जीत ही लो प्यार से। चला के देखो मुझे तीर नज़र, चला के देखो मुझे तीर नज़र, मैं भी उठ जाऊंगी इस स्टूडियो से।

0: देखो यार, बदल ना जाना मौसम की तरह, सरकार बदल ना जाना मौसम की तरह। आसमां को मैंने प्यार की, आसमां को मैंने प्यार की और ज़मीं पे आकर गिरी। मेरी बस यही एक उम्मीद थी, मेरी बस यही एक उम्मीद थी कि मुझे मुझ पे गिरे निगाह यार की। एक शुभ और मुबारक सुबह आप सभी को पेश है। आप जहाँ पर भी हो, जिस हाँ में हो, प्रोग्राम को सुन रहे, मेरी आवाज़ को सुन रहे, मेरा प्यार भी आपके दिल तक पहुँचे। शायद आप गाड़ी में हो तो गाड़ी को संभाल कर चलाना, रास्ते के हालात पर ज़रूर से ध्यान देना। बेंज ऑफ द वैख रे फैलख लत ऑफ फिरकेर ऑफ द वैख एंड रे फैलख यू ड्राइव सेफ।
1: Vanuit de hoofdstad.

बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश अब उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो दिस खाया है बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट कॉप मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो अब उजाला रेडियो

क्या बात है, इस लड़के की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतना सॉफ्ट से बोलता है और इसकी अल्फाजों में बहुत ही दम है। और क्या कहता है ये, तेरे जाने का मुझे

0: तेरे जाने का,
1: और ये आजकल का मेरी फेवरेट सॉन्ग
0: तेरे आने का, अब तो तेरा
1: जब मुड़ के देखा तेरे तरफ तो देखा तेरे बगल में कोई और है, जब तेरी नजर से मेरी नजर मिली तो देखा चेहरे पर नूर है। जबरदस्त, ये पॉप स्टार, ये रॉक स्टार होने वाला है ये लड़का, माइंड इट, देखना।
0: ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ
1: तो क्या हो जाए,
0: रहो न होश में दीवानो।
1: होश में बेहोश, मदहोश, बिन होश,
0: बात

जो दिल में जलोगे तो अरमान जलेगा, जो दिल में जलोगे तो अरमान जलेगा, जो दिल में जलोगी तो अरमान जलेगा, जो भरते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। कुमार सानू एंड लता जी।

0: Hey, churi churi chupke chupke, so actually love story bakhona hai. Churi churi chupke chupke,
1: dil mera le gayi
0: shanti se, ishq ka paigham hu, ishq ka paigham hu, pyar ka vaada ho tum sarvan,
2: chupke chupke
1: churi churi
0: pyar mohabbat ke saath,
1: chupke chupke
0: सरवन सियांबर के लिए. एंड हे नाम सॉन्ग्स एंड नाम सिकंदर फयूली एंड सोन
2: चोरी चोरी चुपके चुपके
0: इंक्लाइन किंच
1: चोरी चोरी
0: ऑल फास्टन हैप्पी हैप्पी बिग बिग बिग डे एंड वी कोमे स्नेल टार्ट एटे. Ik denk niet dat het zaterdag wordt, maar misschien zondag. Geniet van je dag. Johnny Munn.

करे कोई सितम मिले किसी को सजा, करे कोई सितम मिले किसी को सजा, दिल भूलता नहीं है कभी पहली वफा।

जाने मन तुझको जो पाया, आपने गीत को सुना आशा भोसले एंड कई कई की आवाज़ों में। ख्वाहिश फिल्म से निकाल कर आपके लिए पेश हुए

देना शहर में परिवार या रिश्तेदार ननहाई हन प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं।

ये वादा रहा साजना, साजना ये वादा रहा। अ लवली सॉन्ग आपने सुने फ्रॉम द फिल्म प्रोसेसर प्यारे लाल। तो आपने सुने होंगे कि मैं धीरे धीरे पुराने गीतों की तरफ बढ़ रही हूँ। तो लीजिए एक और गीत पेश है, तो धीरे धीरे हम चलेंगे पुराने की तरफ। आशा जी एंड किशोर कुमार। ओ ओ ओ ओ ओ नी दैट्स माय टेस्ट।

0: हवा के साथ साथ घटा के संग संग चल तू और साथ ही चल। और जाने क्यों बार बार
1: बार बार मेरा दिल
0: कहे जाके उसे मिल।

और जाने के बार बार मेरा दिल उससे कहे जाके उससे मिल। तो आप जानते हो, दिल ही जानता है क्यों ऐसे कहता है। आठ मिनट बाकी है 12 बजने में, 8 मिनटन फॉर 12, इमिडल 7, स्टूडियो टाइम।

और मेरे हिस्से के प्रोग्राम में यह आखिरी गीत था। आपको यही कहूँगी कि अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने साथ दिया है, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, मेहरबानी आपसे कहूँगी। आपका साथ ना हो तो हम कहाँ। En dat was het voor mij vandaag. Dit was KR for UR. Tot de volgende keer. Let goed op jezelf. Namaskar. Goedavond, Sastri Akal. और अफसोस के साथ आप 12 बजे के प्रोग्राम में सुनोगे मृत्यु समाचार, मौत की खबर। Het was fijn om weer bij u te zijn. Dank jullie wel.

0: तेरी।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टर्डम से महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्त यार औत श्रीमान महेंद्र अकलू की मां श्रीमती इंद्राणी अकलू की सास लड़कन नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम से परिवार महेंद्र अकलू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल मंगलवार को 81 साल की आयु में इन तख्त यार औत श्रीमान महेंद्र अकलू की मां श्रीमती इंद्रा अकलू की सास नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा जो थी। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटवर्ड सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओखमेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले इतवार के दिन में 3:30 बजे जोंदखास्तांद हाल 4 किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओखमेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार अकलू के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Naar de Vesting doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 richting Almere heb je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

मुखा सिंह के आवाज में भी आपने सुने हैं ये मेडली पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए सुनो वालों. न्यू हम वे फॉर द हेडलाइंस फ्रॉम फंडा.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

ये था उजाला रेडियो पर बजने वाला गीत. उजाला रेडियो आप सुन सकते हैं हर एक दिन हर एक रोज सात दिन चौबीस घंटे लगातार ऑनलाइन ऑफ या डीएबी प्लस नीदरलैंड भर में.

उजाला रेडियो पूरा देश में डीएबी प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए, यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

आज का संगीत का सफर सुनने वालों यहीं तक, और आपसे जल्दी फिर हम मिलेंगे यहीं पर उजाला रेडियो पर। तू जाने है तो मौज से रहिए।

मुक्का सिंह के आवाज में भी आपने सुने हैं ये मेडली पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए सुनो वालों। नू गान वी इवन नार द हेडलाइंस फ्रॉम वंडाग।

13 मिनट हो चुका है, 6:00 मेरे प्यारे सुनो लो, 6:13 गुजर चुके हैं। उजाला रेडियो है ये और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। स्वागत करता हूं मेरे प्यारे सुनो लो आप सभी को। आज 9 तारीख सितंबर है और वो भी साल 2026। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर्स हैं। क्योंकि बुधवार है तो मेरे प्यारे सुनने वाला आज फिर एक बार रात्रि में 9 बजे तक पेश करेंगे हम प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। पिछले हफ्ते शैलेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम हमने पहली बार सजाए हैं, आज उनका दूसरा प्रोग्राम सजाएंगे। उनकी खूबसूरत आवाज में गाए हुए खूबसूरत नगमाएं ज्यादा से ज्यादा तो आपको मालूम है, जानी पहचानी नगमाएं हैं और कुछ अनमोल हीरे भी प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक एक निकाल कर आपकी सेवा में पेश करेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, इस प्रोग्राम के दौरान हर एक घंटे पर आप इश्तिहारे सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का हालात और सड़क का क्या हाल चाल है। और अफसोस के साथ भी आज 7 बजे के इश्तिहारों के बाद प्रोग्राम में मृत्यु समाचार भी पुकारा जाएगा। ब्रेक्ट फन ओवरलैड ना द कमर्शियल ब्रेक फन सेव इर हियर ऑफ यू आर। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान भी मेरे प्यारे सिनोलो व्हाट्सएप पर बातें भी आप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0 3 3 9 0 0 और आपके हर एक कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप अवश्य दफ्तर को तार करें सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक op 020-409-0807 020-409-0807 आपके फरमाइशें जरूरी खबरें मौत की खबरें किसी भी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप तार कर सकते हो दफ्तर के दिन दफ्तर के वक्त दफ्तर के तार पर या तो 24 घंटे 7 दिन लगातार मेल के जरिए आप अपना कामकाज दिवा सकते हैं, जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेल करना है info@ujala.nl। शैलेंद्र सिंह जी जो अभी अगले महीना 4 अक्टूबर को यादन वोट 73 73 साल की उम्र है इस वक्त और एक महीना और तो 74 साल के होंगे। उनका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, बहुत सारे लोग इनकी आवाज़ को पसंद करते हैं और ख़ास करके इनकी नगमाएं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। आज कुछ छुपे हुए हीरे जैसे मैंने कहा भी साथ लेकर आए हैं और बस यही उम्मीद तराशा हम करते हैं कि आज भी प्रोग्राम आप भरपूर भी एंजॉय करेंगे। Ik wil ook vanuit hier mera chota bhai jo hai aaj friyari hai main broertje Rabin Chutkan uit Gouda janamdin badhai ho, happy birthday, gefeliciteerd en natuurlijk heel veel geluk en goede gezondheid. मैं ब्रोचे रबीन छुटकन। ओपनिंग सिलेक्शन की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एक नगमा मस्ती भरी गीत है, एक नगमा जो आनंद बख्शी जी ने लिखा और एक नगमा जिसका संगीतकार है आर डी बर्मन। किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह जी ये गीत मिलकर गाएंगे और फिल्म का नाम है जागीर। मेरे प्यारे सुनने वालों, जागीर 1984 का है, 1984 पेश करता हूं सेवा में। एंजॉय यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय बैक टू द फ्यूचर और एंजॉय दिस ओपनिंग सिलेक्शन।

0: हम दिलवाले सारी दुनिया से निराले, हम सा या हम सा हम जैसा कौन है, हाँ ऐसा होना चाहिए। शैलेंद्र सिंह जी, किशोर कुमार और एक आवाज था, बहुत कम गाए हैं लेकिन फिर भी गाए हैं, जिसका नाम है शक्ति, शक्ति निज शक्ति कपूर। और सिर्फ शक्ति लिखा है, मैं और क्या कह सकता हूँ। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये नगमा आज का ओपनिंग सिलेक्शन। संगीतकार आर डी बर्मन, राहुल बर्मन। फिल्म जागीर नीहतिन फीरन तख्त का है मेरे प्यारे से नौलो 1984। प्रमोद चक्रवर्ती जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी, जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, डैनी डेंजोंगपा और इन तीनों पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है मूवी में। सिने तमान भी है, शुमानंद, रंजीत, अमरीश पुरी, द ग्रेट प्राण साहेब जी, इफ्तखार और बीना जी। ये ओ जला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से। आज इस 9 तारीख सितंबर बुधवार के रात्रि को पेश करता हूं प्रोग्राम फिर एक बार बैक टू द फ्यूचर और नगमाओं के साथ, सब नहीं लेकिन बहुत सारे नगमाओं के साथ कुछ ना कुछ हमारे यादें जुड़े हुए हैं, और उन यादों को हमेशा बुधवार के रात्रि को हम और आप मिलकर ताजा करते हैं। ओपनिंग सिलेक्शन तो हुआ है मेरे प्यारे सुनने वालों, और हम आपको ले चलते हैं शैलेंद्र सिंह जी का पहचान जहां से हुई है, जिस गीत से हुई है, और इस गीत के जरिए ये इतना मशहूर हुआ, फिल्म बिग ब्लॉकबस्टर हुआ, कलाकार, फिल्म बनाने वाले और बजाने वाले और लिखने वाले, क्या कहूँ, सभी काफी मशहूर हुए हैं। और अभी तक ये गीत जब भी चलेगा लोग पसंद करेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर, आपके खून के हर एक, क्या बोली, आपके नस नस में, हाँ आपके रग रग में कुछ ना कुछ होता होगा जरूर। फिल्म बॉबी का नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, बॉबी 1973 का फिल्म है, बिग ब्लॉकबस्टर मूवी, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी जीत, हालांकि जीत ये गीत जीता नहीं, अथवा साली मख नोमिनेर, लेकिन फिर भी इतनी पॉपुलर। और गलतियां सभी से हो जाता है, गलत नगमा को शायद उस साल को चुने हुए हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि सभी गीत खूबसूरत हैं, जो भी चुने होंगे वो भी शायद खूबसूरत रहा होंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत मेरे प्यारे से नौलो शैलेंद्र सिंह जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक। Dan zet ik nou net weer de verkeerde nummer. En dan moet ik de goede zetten natuurlijk. Oeh, die heb ik al gedraaid, zie ik hier. Ah, mijn Shire tonen hier heb ik al gedraaid. Ja, itna computer hier, John, hè? Bolle, nee, dat heb je vorige week gedraaid. 2 september. Ah. Or ham ook je 4 tarief, Carilla. Nou, dan gaan we... अगले की जो काफी मशहूर हुआ है ये फिल्म का मैं पेश करने जा रहा हूं, एंड दैट इज नेचुरलक चाबी खो जाए, क्योंकि हम तुम कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाते हैं, फिर क्या होता है, चलो हम सुनते हैं शैलेंद्र सिंह जी के साथ लता जी।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके।

हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। खूबसूरत गीत, पॉपुलर सॉन्ग, छेड़छाड़ सॉन्ग। हाँ जी, प्यार था लेकिन बहुत सारी छेड़छाड़ भी था। शैलेंद्र सिंह जी और लता जी की खूबसूरत आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ब्यूटीफुल म्यूजिक। मेरे प्यारे सिने वालों, बिग ब्लॉकबस्टर मूवी बॉबी जो 1973 का है, नहीं इंद्रियन से सभी ने देखे होंगे। ये मूवी से गीत हमने निकाले हैं। राज कपूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर और इंट्रोड्यूस किया है एज ए हीरो उनके बेटे ऋषि कपूर जी। नया स्टार और नया स्टार के लिए नया खूबसूरत अलग सी आवाज उन्हें चाहिए था। शैलेंद्र सिंह ने गाए हैं और काफी मिलती जुलती थी उनकी आवाज ऋषि कपूर से। एना तो लक्षी सफेर साहब, डिंपल भी था मूवी में, प्रेमनाथ, प्राण साहब जी, अरुणा रानी, प्रेम चोपड़ा, फरीदा जलाल, दुर्गा खोते, एना तुलक, सोनिया सहानी जी, पिंचू कपूर। हाँ जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं सरे 6:00। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहा फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर और शैलेंद्र सिंह जी का आज दूसरा हिस्सा हम सजा रहे हैं। और जहां तक मेरा ख्याल, इस नोक एन जो मैं अगले हफ्ते 16 सितंबर को पेश करेंगे, तब तक एक तुफलख फंदाख खसीन। बहुत सारे प्रोग्राम सजाया जाता है, बनाया जाता है, बहुत सारे हम करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, हम ही करते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी ढेर प्रोग्राम हम बनाते हैं, सजाते हैं, एनाते सालम आओ इन प्रीफेट टाइट, कभी कभी भूल जाता हूँ कि कितना इनका प्रोग्राम है और कितना उनका, और हमें वक्त के हिसाब से प्रोग्राम भी बनाना चाहिए क्योंकि हमारा हिस्सा का प्रोग्राम सिर्फ 3 घंटे का है। कभी कभी फ्लैंग करते हैं। ममेस्ताल कनेक्टा तो उगनी थे। एक नगमा की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। ये फिल्म नहीं है, मैंने सोचा फिल्म है लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये एक एल्बम है जिसका नाम है मेरे हमदम। और तरह तरह के कलाकारों ने गीत गाए हैं इस एल्बम में। और एक गीत बहुत खूबसूरत सुरेंद्र साथी जी का लिखा हुआ शैलेंद्र सिंह जी ने गाए हैं और वो नगमा इन्होंने गाए हैं नदीम श्रवण की साज और संगीत पर। टू फ्रेम द एल्बम मेरे हमदम आपको सुनाता हूं एक खूबसूरत गीत। देखिए यूं ना हमें, पेश करता हूं हीरो निवार।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, देखिए यूं ना हमें दिल मेरा ये बहक जाएगा। शैलेंद्र सिंह जी की खूबसूरत आवाज और सुरेंद्र साथी जी का लिखा हुआ नगमा है। संगीतकार नदीम श्रवण और 1993 93 में ये एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम है मेरे हमदम। और मेरे हमदम से हमने ये नगमा को निकाले हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। आपको ले चलता हूं एक गीत की ओर। ये मैं भी नहीं जानता था कि शैलेंद्र सिंह जी ने लिखा गाए हैं सॉरी कि इन्होंने गाए हैं। हमने सोचा या ईमानदार्स एक हथेली लिंक ना शैलेंद्र सिंह, लेकिन ये प्रोग्राम सजाते वक्त मालूम पड़ा कि इसका वर्जन दो है। एक आशा जी का वर्जन है मूवी में और एक शैलेंद्र सिंह जी का एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और फिल्म का नाम गुनहगार कौन है। गुनहगार कौन, ये जो फिल्म है 1991 का है, नीहत। और मजरू, द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ एक नगमा है जो शैलेंद्र सिंह जी गाकर सुनाएंगे, और वो भी राहुल बर्मन के साज और संगीत पर। ये नगमा की ना सनम मर जाएंगे हम।

ना सनम मर जाएंगे हम, मेरे प्यारे सुनने वालों। खूबसूरत गीत शैलेंद्र सिंह जी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन संगीतकार, राहुल बर्मन संगीतकार। फिल्म का नाम गुनहगार कौन, और ये फिल्म 1991 का है। नीहंती नहीं नीहंत अशोक गायकवाड़ जी ने, डायरेक्ट किया है। राज बब्बर, मुशीन खान, संगीता बिजलानी, सईद जाफरी, परेश रवेल, सत्यन कपूर, इन सभी का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, वक्त तो ऐसा है बहुत कम, हम बढ़ रहे हैं 7 बजे की इश्तिहारे की ओर, और इश्तिहारों के बाद जैसे मैंने कहा, अफसोस के साथ भी थोड़ा सा मृत्यु समाचार है प्रणाम में जो पुकारा जाएगा। मौत की खबरें ना द कमर्शियल ब्रेक। तमाम सूचनाओं के बाद दम बेनिकर सोरोंत 12 ओवर सेफ अवेयर तरह दो नगमा, एक वो हैप्पी न्यू ईयर का नगमा शैलेंद्र सिंह जी का काफी पॉपुलर, अर्ड फिल्म दो जासूस आपको सुनाने जा रहा हूँ। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो गाना इतना खूबसूरत है, आपको सुनाएंगे जरूर। और उसके बाद में एक नगमा है हैप्पी सॉन्ग कि अरे शोला शोला भोला रे, जो मिलकर गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी, उषा मंगेशकर और बप्पी लहरी, फ्रॉम द मूवी आपकी खातिर। ये दोनों नगमाओं के बाद ब्रेक होंगे मेरे प्यारे सुनो, ब्रेक के उस पार जरूर से जरूर आप सभी से फिर हम मिलेंगे।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है Ujala Radio. DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
3: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

रंगीला हूँ मैं दिल का रतन मेरा नाम और निशाने पे निशाना लगाना है मेरा काम। शैलेंद्र सिंह जी की आवाज में मूवी का टाइटल सॉन्ग, क्योंकि फिल्म का नाम भी है रंगीला रतन। हमने निकाले हैं एक गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ नगमा और जिसका संगीतकार है कल्याण जी अनान जी। रंगीला रतन 1976 का मूवी मेरे प्यारे सिने वालों ने 3 सीजन एस रामनाथन ने डायरेक्ट किया है। ऋषि कपूर, परवीन बाबी, द ग्रेट अशोक कुमार, अजीत, जीवन सुंदर, इन सभी का एक फिल्म। 17 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिने वालों, 7 बजकर। तहे दिल से स्वागत करता हूँ लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से। फिर एक बार पेश कर रहा हूँ एकदम लाइव एंड डायरेक्ट प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और पिछले हफ्ते पहली बार शैलेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम हमने सजाए थे, आज दूसरा हिस्सा है और अगले हफ्ते 16 तारीख को शैलेंद्र सिंह जी का आखिरी तीसरा हिस्सा भी हम पेश करने वाले हैं हीरो निवार। फिर एक बार स्वागत है। आज एक ऐसा दिन भी देखो ना बीता है, बीत रहे हैं कि ओफे का स्टॉकिंग है, ट्रेन, ट्रेम, बस, मेट्रो, पॉन्चेस जो है सभी नहीं चला, कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ चला है, जैसे कि आम्स्टर्डम से होफडॉर्फ या स्किपोल, लेकिन बाकी तो 24 घंटे के लिए बंद था और बंद है स्टॉकिंग। अब एन्स ना बातें रखेरिंग के जो का नाम है, कैसे बोले चिजवा, रखेरिंग के बुसलाइट पे कि वो सब मांगे तकौर्ट करे तो या अति साल मुइलक, सभी को बहुत मुइलक है, सब कुछ महंगा ही जा रहा है और सलारस बढ़े हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं सभी चीज़ों का, तो लोग अपनी आवाज़ उठाए हैं। और आज जब स्टॉक जाकर हुआ है 24 घंटा तो इतनी बारिश हो रहे हैं आज, हालांकि नेचर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि बारिश बरस रही है। मारफोर फंदा लोगों जो खास करके अपने शहर में बाइसिकल से गए होंगे काम या अवलोपन थे बस इतनी लोग में इन द रेगन, लेकिन कहा गया है कि मोटर कार का जो फीलर वीलर एक्सट्रीम नहीं रहा, एकदम नॉर्मल था, तो शायद हो सकता है भी कि बहुत सारे लोग घर पर काम किए हैं, टॉयस वेयर का आजकल काफी पॉपुलर। मेरे प्यारे सुनो, एक बहुत ही खूबसूरत गीत की ओर आपको ले चलते हैं, एक नगमा अंजान साहब जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी, नाइटिंगेल आशा जी और शब्बीर कुमार, बप्पी लहरी की साज और संगीत पर। 1988 का फिल्म पाप की दुनिया से हम नगमा निकाल रहे हैं और पेश करता हूं ये रहा।

जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब है जिंदगी। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों जो मिलकर गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी, नाइटिंगेल आशा जी और शब्बीर कुमार। अनजान साहब जी का लिखा हुआ ये नगमा जो ये तीनों ने मिलकर गाए हैं, बप्पी लहड़ी की साज और संगीत पर। पाप की दुनिया फिल्म का नाम, पाप की दुनिया 1988 का फिल्म है। नीतिन अख्तन तख्त, शिबू मित्रा, शिव कुमार डायरेक्शन और सनी देओल, चंकी पांडे, नीलम कोठारी, प्राण साहेब जी, शक्ति कपूर, डेनी दिनजोंगपा, मैक मोहन, सीमा देव, पैंटल सुधीर का फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, मोरखन 10 तारीख जो है बृहस्पतिवार, मोरख दोनदख 3 सितंबर रात्रि में प्रोग्राम हम नहीं सजाएंगे। एक बैन एर मोरखनाफ नीत मैं दिल की आवाज। प्रोग्राम प्लान किया गया था 8 बजे से 11 बजे, लेकिन किसी भी वजह से मैं कल प्रोग्राम नहीं सजा पाऊंगा। तो आज हूं मेरे प्यारे सुनवालों, और आने वाले शनिवार 12 तारीख सितंबर को फिर सेवा में हम हाजिर रहेंगे। शनिवार को 5 घंटे लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर अवश्य आपके साथ मिलकर हम बनाएंगे लाइफ एंड आड़ा की वार के स्टूडियो रतनम से। एक और पॉपुलर सॉन्ग शैलेंद्र सिंह जी का, मैं वो गीत की ओर आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम खेल खेल मैं, और खेल खेल मैं 1975 का मूवी है। 1975 द ग्रेट गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग शैलेंद्र सिंह जी गीत गाएंगे और राहुल डबरमन संगीतकार। ये नगमा

हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, और हम तुम सनम। काफी पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ, जो ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया है 1975 का मूवी खेल खेल में, से हमने जो गीत निकाले हैं। गुलशन मावरा जी ने गीत को लिखा, संगीतकार थे आरडी बर्मन, राहुल डे बर्मन, रवि टंडन जी ने डायरेक्ट किया है ये मूवी खेल खेल में। ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राकेश रोशन, हाँ जी, देव कुमार, कमल कपूर, यंकी दास, इफ्तखार, अरुणा रानी, इन सभी का फिल्म है। तो मेरे प्यारे सुनो, मैंने आप सभी से कह दिया है कि मैं कल मोरखना फन 3 सितंबर खेन दिल की आवाज हीर ऑफ यू आर रात्रि में आज से 11 बजे दन बहने करनी थी। किसी भी वजह से मैं कल नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शनिवार 7 रहता मैंने कर लिया। 12 तारीख सितंबर 5 घंटे हाँ लेकर कनाल लेकर वीकेंड फाइव्स हियर ऑन यू आर लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। एक फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों, नाम है सुन मेरी लैला, और सुन मेरी लैला 1983 का एक फिल्म है, नीहत इंद्रियन तख्त। ये फिल्म का दो नगमाएं आगे पीछे आपको हम सुनाने जाएंगे। दोनों नगमाएं महेंद्र दलवी जी ने लिखा, संगीतकार राम लक्ष्मण, और ये दोनों नगमाएं डुएट्स हैं जो शैलेंद्र सिंह जी ने मिलकर गाए हैं बहरोज छतर जी के साथ। पहला गीत मौसम है रंगीन और तमन्ना है जवान, और दूसरा नगमा है चलो हटो तुम चोर हो, चलो हटो तुम चोर हो। अरे बाप रे, पेश करता हूं फ्रॉम द मूवी सुन मेरी लैला।

एनी और विकी का देखिए छेड़छाड़ सो कि चलो हटो तुम चोर हो, और उससे पहले मौसम है रंगीन तमन्ना है जवान। दो खूबसूरत नगमाएं महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गाए हैं शैलेंद्र सिंह जी और बैरोज छतर जी, और वो भी राम लक्ष्मण के साज और संगीत पर। सुन मेरी लैला फिल्म का नाम, मेरे प्यारे सुनने वालों 1983 का फिल्म नीघंतिंद्रियन तख्त, एक लव रोमांस मूवी, और चंडर बैल जी ने डायरेक्ट किया है। राज किरण, दीपिका, ओम शिव पुरी, इन सभी का एक मूवी है। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते चेक www.ujala.nl या तो हमारी सोशल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। बुरे काम का बुरा नतीजा, एक नगमा मस्ती भरी गीत है जो मिलकर गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी विद द लेजेंड सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहेब जी, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार 1977 का।

बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा। मस्ती भरी गीत रफी साहब जी और शैलेंद्र सिंह जी ने मिलकर गाए हैं। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किस आज और संगीत पर 1977 नेहती सैफ नसीब फतह का फिल्म चाचा भतीजा से हमने नगमा को निकाले। मनमोहन देसाई मूवी का डायरेक्टर, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, रणधीर कपूर, जोगीता बाली रहमान, इन सभी का एक फिल्म है।

प्यारे सुनो, अब वक्त आ गया कि मैं दो आखिरी नगमाएं पेश करूं और ये दो नगमाएं के बाद ये घंटे से हम विदा लेंगे, बढ़ चलेंगे 8 बजे के ब्रेक की ओर। और 8 बजे के बाद आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। दो नगमाएं फ्रॉम द मूवी तराना, मेरे प्यारे सुनो वालों, तराना नेहती नेहन से फतह का फिल्म है 1979। दो नगमाएं रविंद्र रवल जी का लिखा हुआ, जिसका संगीतकार है राम लक्ष्मण। दोनों नगमाएं शैलेंद्र सिंह जी गाकर सुनाएंगे और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। मेरे प्यारे सुनो वालों, एंजॉय द सॉन्ग्स और ब्रेक के बाद मिलते हैं।

सबसे बढ़ के मेरा जहर है और मैं हूँ एक जहरीला इंसान। फिल्म का नाम भी है जहरीला इंसान, मेरे प्यारे सुन वालो। मूवी का टाइटल सॉन्ग, वेल फिल्म चला नहीं बॉक्स ऑफिस में, लेकिन आपको हम ये कह दें कि ये फिल्म के तमाम गाने जो है लाजवाब बेमिसाल है। जहरीला इंसान, जैसे कि ओ हंसनी मेरी हंसनी, फान किशोर कुमार, ये नगमा जो हमने चलाए हैं सांप से भर के, और शैलेंद्र सिंह जी का एक और नगमा जो पिछले हफ्ते हमने चलाए थे कि मेरे दिल से ये नैन मिले रहने दो जाने मन, एंडन है प्योग नोख, ये सिलसिला प्यार से चला चलते चलते तेरा मेरा संगम, नाइटिंगेल आशा जी का। और एक गाना था लता जी का कि खूबसूरत लड़की मजबूरन शादी जब हो जाते हैं, और वो शादी सिर्फ एक तमाशा था, और दुखित लड़की गीत गा रहे हैं, और वो भी लता जी की आवाज में, कि वो सुनो कहानी जब मैं हुई तुझसे जुदा। या मो ये सॉन्ग्स फिल्म में मुझे कहानी अच्छी लगी, लेकिन या एक कर्नल बखराए पर की फिल्म चला नहीं। ये ऋषि कपूर का एक मान लिया जाए एक फ्लॉप मूवी है, लेकिन देखने लायक है, और गाने के लिए जरूर आप देखिएगा जहरीला इंसान। फिल्म मैं देखता हूँ पुटन कंगाल जी ने डायरेक्ट किया है, और ऋषि कपूर, मौसमी चटर्जी, नीतू सिंह, प्राण साहब जी पैंटल, मदनपुरी, इफ्तिखार, निरूपा रॉय का एक फिल्म। 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनेवालों, वो भी 8 बजकर। आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से आप सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज दूसरा हिस्सा या दूसरे बार हम सजा रहे हैं प्रोग्राम, और वो भी शैलेंद्र सिंह जी का, इनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स जिसमें से कुछ नगमाएं काफी पॉपुलर है और कुछ नगमाएं कम लेकिन खूबसूरत सभी है, आप तक मैं पेश कर रहा हूं। ले चलता आपको अगले मूवी की ओर। फिल्म का नाम है सियासत, और सियासत का एक नगमा हसन कमल जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाएंगे नाइटिंगेल आशा जी और शैलेंद्र सिंह, राहुल डोबरवन की साज और संगीत पर। सियासत एक फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 1992 का है। पेश करता हूँ गीत जिंदगी में है प्यार का दिन।

जिंदगी में है प्यार का दिन भी। खूबसूरत गीत हसन कमल का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं रहुड़ बर्मन की साज और संगीत पर नाइटिंगेल आशा जी और शैलेंद्र सिंह। फिल्म का नाम सियासत, मेरे प्यारे सुनने वालों 1992 का मूवी निकट। शुकवंत धारा ने जो डायरेक्ट किया है, कुमार गौरव, किमी कटकर, शशि रनन, शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंडा, दीपा मेहता और नीलम का एक फिल्म मेरे प्यारे सिनेमा। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सिनेमा। फिर एक बार आप सभी से हम ये कहने कि मोरखनावंत कल 10 तारीख सितंबर दान बैनेकर नीत मैथ प्रोग्राम दिल की आवाज रात्रि में आज से 11 बजे प्लानिंग में था बनाने के लिए, लेकिन अफसोस एक कान मोरख उन्मोखलक प्रोग्राम मांग। लेकिन शनिवार, आने वाले शनिवार 12 तारीख को फिर हम हाजिर रहेंगे, 5 घंटे आपका और मेरा साथ रहेंगे रात्रि में 7 बजे से 12 बजे, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एंड हाउ गेसेलिग वीकेंड इन लाइडर। तू जाने तो मार्स ब्रुक का चित्रा जी और हेर एंद्रू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। आमस्टरडाम का कैटरीना, डंकीवाल कैटरीना एंड या आललीचे सैन लोग, तू जाने तो आललीचे सैन अलटेड लोग, सोमगे सैन फेवरेट सोमगे नीट, लेकिन कैटरीना एट आमस्टरडाम डंकीवाल आपके ऐप के लिए। रोहिणी कल्लू जी एट रोटरडाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। और मफराव एंड मनेर बिहारी वहाँ डोर ब्रेडा में, एक्चुअली डोर ना है मार अमदात ख्रेंस में लगे हैं, तब सोचता हूँ लोगों यही समझते होंगे कि बहुत दूर है, लेकिन रोटरडाम से दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मफराव एंड मनेर बिहारी जी आपके ऐप के लिए आलते थसेलक में चुली। मिका एट दनाख, डंकीवाल मिका आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। और स्कीवनिंग, हमारे प्रिय स्कीवनिंग में वहाँ से ऐप भी आए हैं लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। और लक्ष्मण जी, लक्ष्मी जी हमारे दिलों में हैं। आमस्टरडाम सेंट्रम से भी ऐप आए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी प्रभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी आपके ऐप के लिए। और वैसे तो दनहेल्दर में रहते हैं इल्स रामदयाल जी, लेकिन देखो ना दूर गए हैं हमारे प्रिय मॉरिशियस में, और वहाँ से भी इन्होंने फोकस में से थ्री यूर फर्स्ट खेल ऑफ डेथ मोमेंट, और एंथ अक्टूबर से जबकि हम विंटर टाइप में जाबे दाने से थ्री यूर फर्स्ट खेल फोरआउट हैं, वो लोग फोरआउट हैं। इल्स रामदयाल एंजॉय योर वेकेशन, वहाँ मॉरिशियस में बहुत खूबसूरत आइलैंड है, छोटा सा पैराडाइज है। और बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए, ऐप करने के लिए। आइलिन जी एट हार्लेम को भी हम कहेंगे धन्यवाद, डंकी वाला आइलिन ऐप करने के लिए, चून करने के लिए, और हम मजा ले रहे हैं सुनकर, बहुत खुश हुआ हूँ। एन अतुल्लक जो सदियों से सपोर्ट करते आए हैं और करते जा रहे हैं, आमस्टरडाम का आईफी जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया आईफी, डंकी वेल आपके ऐप के लिए चून करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और सुशीला चंद्रिका सिंह जी, हमारा प्यारा सा समधनिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए चून करने के लिए। सुशीला चंद्रिका सिंह जी आज अमसल फेम, एक फिल्मी कवाली पेश करने जा रहा हूँ। ये गीत मुझे बहुत खूबसूरत है, और हमारे या फमे हमारा
हमारा प्लेलिस्ट में ये गीत हमने जब रखा तो मैंने सोचा अरे बाप ये तो हमारे फेवरेट सॉन्ग में से, अगर लिस्ट आप देखें तो ये गीत भी उसमें शामिल है। मुझे कुछ फिल्मी कवालीस इतना खूबसूरत लगते हैं और ये यकीनन एक है जो शैलेंद्र सिंह जी गाकर सुनाएंगे। ऋषि कपूर भी कुछ बोलेंगे और साथ भी देंगे नाइटिंगेल आशा जी। मजरू सुल्तान पुरी जी का लिखा हुआ ये एक कवाली है, एक नगमा है और संगीतकार है आर डी बर्मन। जमाने को दिखाना है फिल्म का नाम, 1982 का। निहत इंतवेन तख्त, क्या इश्क ने समझा है और क्या हुस्न ने फरमाया है, हम खाक नशीनों का भूखड़ में जमाना है। शैलेंद्र सिंह जी, आशा जी और ऋषि कपूर।

जमाने को दिखाना है परी हो आजमानी तुम। बहुत ही खूबसूरत फिल्मी ये था कवाली मेरे प्यारे सुनने वालों। या 61 नंबर क्या एक। और जब भी एक गीत मुझे पसंद है और फिल्मी कवाली खास करके भी रफी साहब जी का गाया हुआ कुछ बहुत ही खूबसूरत फिल्मी कवालीज है तो हमारे रौंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये नगमा भी एक ऐसा नगमा है या एक वही नीत फील सुलनत में सीन वात मिंदर फिंद मार जिस अखवाल दख नुमर। ये था नगमा जो मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा राहुल डबरमन की संगीत शैलेंद्र सिंह और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गीत गाए हैं। समाने को दिखाना है फिल्म का नाम और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है नाजीर हुसैन ऋषि कपूर पद्मिनी कोल्हापुर कादर खान अमित खान जोगिता बाली इन सभी का एक फिल्म है। वक्त निकला जा रहा है मेरे प्यारे सुनने वालों 6 मिनट गुजर चुके हैं 8:07 ओवर क्लॉक वन हाल ऑफ नई और रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे। एंडरसन सीकर नोख 20 नंबर्स व्हाट इट विल ड्राइव नहीं आज नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों क्योंकि कुछ नगमाएं ऐसे हैं लंबे हैं कुछ छोटे हैं तो ये वक्त के हिसाब से चलाना पड़ेगा मुझे। हम आपको ले चलते हैं फिल्म खट्टा मीठा ये फिल्म की ओर। फिल्म नीहतिन सीफन सीफन तक का है 1977 खट्टा मीठा गुलजार साहब जी का लिखा हुआ एक नगमा एक हैप्पी सॉन्ग है फोकस में एक ब्याह वाला नगमा भी है। संगीतकार है राजेश रोशन और मिलकर ये गीत गाएंगे फ्रेनी ओ फ्रेनी शैलेंद्र सिंह जी और अमित कुमार पेश है।

Φρενή, ο φρενή, με ρίπιαρε σενόρο. Αμήν κουμάρο, σελίνδρε συγγύη, καγκάια, χουάιε, ναγμά, γιοτσάδι, βαλά, βιτάι, βαλά, ναγμά, ε, ορ, τουλόγο, το γιάννε, ε, κι, αμέ, κίτνα, πέρσαντ, ε, ιστερά, και ναγμά, ε. Το άτσι, ε, γιτ, βι, αμνε, σάμιλ, κι, αε. मेरे प्यारे सुनो लो ये शैलेंद्र सिंह जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं उनके नगमाएं अकेले का गाया हुआ डुएट सॉन्ग्स हम आप तक पेश कर रहे हैं आज इनका दूसरा प्रोग्राम सजा रहे हैं और अगले हफ्ते 16 तारीख को हम सजाएंगे इनका तीसरा और आखिरी प्रोग्राम मेरे प्यारे सुनो हम आपको ले चलते हैं एक फिल्म की ओर जिसका नाम है सुहाग और सुहाग एक फिल्म है 1979 का नगमा ये भी शादी वाला है लेकिन काफी मस्ती भरी ये नगमा है आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे शैलेंद्र सिंह जी The legend Padmashri Muhammad Rafi Sahib ji aur Nightingale Asha ji Lakshmikant Pyarelal ki saaj aur sangeet par ki teri rab ne bana di jodi

तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, लेकिन तुझे लग तो जाएंगे हटकड़ियां। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत मेरे प्यारे सुन वालों, शादी वाला सॉन्ग, मस्सी भरी गीत हमने आप तक पेश किया है। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत मिलकर गाए हैं नाइटिंगेल आशा जी, रफी साहब जी, और जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी। फिल्म का नाम सुहाग, मेरे प्यारे सुन वालों, नेखती नेखनन सीवन तक, हाँ जी 1979 का मूवी, और ये फिल्म का जो डायरेक्टर है मनमोहन देसाई, द बिग बी अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार शशि कपूर, रेखा, परवीन बाबी, अमजद खान, निरूपा रॉय, रंजीत, जीवन कादर खान, जगदीश राज, इन सभी का एक फिल्म है। मेरे प्यारे सुनो, ऐसा वक्त आ गया है कि आखिरी गीत आज का ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर जो हम सजा रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से, और सेकंड प्रोग्राम दूसरा हिस्सा ट्वीट प्रोग्राम फैन शैलेंद्र सिंह जी का जो हम सजा रहे हैं, आखिरी गीत पेश करने को जाएंगे एक नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार, मेरे प्यारे सुनने वालों, शैलेंद्र सिंह जी, अमित कुमार, नाइटिंगेल आशा जी और आरती मुखर्जी मिलकर गीत गाएंगे। परवरिश फिल्म का नाम, और ये 1977 का है, ये भी मनमोहन देसाई का डायरेक्ट किया हुआ एक फिल्म है जिसमें द बिग बी अमिताभ बच्चन ने काम किया है, विनोद खन्ना जी के साथ, नीतू सिंह, शबाना आजमी एंड द ग्रेट शमी कपूर, अमजद खान, कादर खान, इंद्रानी मुखर्जी, तो मेल्टर। मेरे प्यारे सुनो, आपको फिर एक बार इतला दे कि मोर्ख मैंने करनी थी, मैं दिल की आवाज मार साथ रख, शनिवार को सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़, टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।

मुक्का सिंह के पास में भी आपने सुने हैं ये मेडली पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए सुनो लो. न्यू हम वे फॉर द हेडलाइंस फ्रॉम वंडा.

0: सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।
1: मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो,